आप जानते ही हो मैं सारियां संगतां दी संभाल करदा हां, मेरे बगैर इत्थे किवें कम चल सकदा है, मैं नहीं जा सकदा, क्योंकि वो जानदा सी गुरु अमरदास पातशाह जी दी उम्र थोड़ी है। गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपनी उम्र विचों 6 साल कुछ दिन गुरु रामदास जी नूं दित्ते सन, इसलिए प्रिथिया जानदा सी, आख्या ऐसा ना होवे मैं लाहौर चला जावां ते पिछों गुरु रामदास किसे होर नूं गुरियाई दे दे, उचारण करो श्री वाहिगुरु। नहीं गया, पिता दा वचन मोड़ दिता, महादेव जी नूं आख्या गया, आख्या महाराज मैं तां अवधूत रहिंदा हां, तुहानूं पता ही है मेरे लिए जमना मरना खुशी गमी सब एक बराबर है, इसलिए मैं भी नहीं जा सकता। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जो पूज माता जी माता पानी दा वचन, बेटा अपने गुरु पिता दा कदे वचन नहीं मोड़ना, क्योंकि पिता दे आज्ञा दे समान होर कोई जप तप नहीं, आज्ञा सत सत कर मननी। तां गुरु अर्जन देव पातशाह चल पे भाई सियारी

अपने दूसरी चिट्ठी लिखी, तेरा मुख सुहावा जी, सहज धुन बाणी, चिर हुआ देखे सारंग पानी, तन सो देश, हे गुरु पिता आपदा सुंदर स्वरूप मैं कदी अखा तो ओले नहीं सी वेख सकदा, पर हुण तक कितनी मुदत बीत गई, तेरा दीदार नहीं होया, तन सो देश।

नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, ये अखर लिख के उसे इशक नू बुलाया। गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, भाई गुरु के लाल, अगलियां चिट्ठियां तो तू प्रिथिया जी नू दित्तिया हन, पर याद रखी ये ना उस नू देवी, ये सतगुरां दे चरणां विच जाके रखी। आपनूं शक हो गया सी कि ए पत्र कामा पृथ्वी चंद ने हजूर नूं नहीं पहुंचेंगे, क्यों कह के सिख नूं तागीद करके तोरिया। सिख आया, उसने देखिया पृथ्वी चंद सेवा करवा रहा है, उसने ओ रस्ता ही छड़ दिता उस पासे दी जिथे गुरु जी बैठे सन, उसे जाके पहुंचिया मत्था टेकिया। गरीब निवाज में अर्जुन देव जी की पत्रिका ले आया, मत्था टेक के बैठ गया। जो पत्रिका गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने पढ़ी, अवस्था देख के इतना प्यार देख के आपदा मन द्रव गया। भावे अंतर जामी सन, सब कुछ जानते सन, केड़ा भुले सन, लेकिन एक बाज किरिया देख के आप जी का चित अति द्रवीभूत होया। उस मौके ही बाबा बुढ़ा आदि पंज मुखी सिखां नू बुलाया, हुक्म होया जाओ लाहौर, अर्जन देव नू लै आओ। ओ सानू मिलन वास्ते बहुत व्याकुल हन, बड़े बेबल हन, ये सिख जांदे हन लाहौर पहुंचदे हन। श्री अर्जन देव जी नू कहा, आप जी नू हजूर श्री रामदास सच्चे पातशाह जी ने याद की। अज ए पत्रिका तुहाडी साहिब जी नू पहुंची। जदों अर्जन देव जी नू लै के अमृतसर पहुंचे, दरबार विच हजूर सुशोभित सन, चरणा विच हाजिर हो गए। हजूर दा रूहानी दरबार लग्या है, बड़े कीमती शामियाने लगे हन, कीमती फर्श विछे हुए हन, बहुत सारी संगत हजूरी विच बैठी हुई हजूर दे यूं दर्शन कर रही है, जिवें करोड़ों चकोर चंद्रमे वल एक टक लगा के देख दे हन। गर्दन पावे मुरड़ जाए, दीदार करनू नहीं हट दे, कन्ना नाल गुरु की बाणी सुनदे हन, जबान करके बाणी दा उचारण करदे हन, निरंतर सिमरन करन वाले प्रेमी इथे जुड़े बैठे हन। ऐसा सिमरन, ऐसी ब्रह्म ज्ञानियां दी सभा विच जदों धन गुरु अर्जन देव पातशाह पहुंचे, तो अपने गुरु पिता दे चरणा ते जाके मस्तक रख दिता, नैना दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते। अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाऊ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाऊ, सतगुर सेती रत्या, दरगह पाईए ठाऊ। ऐसा अलोकित सचखंड दा नक्शा, ते एदर एदी बेबलता के हजूर ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू प्यार दिता, ते पुछन लगे अर्जन देव, आ जेड़ी तू चिट्ठी लिखी है एदे उपर तीसरा अंग पाया होया है, इस तो पहला भी कोई चिट्ठियां लिखियां हो? क्या गरीब निवाज सच्चे पातशाह दो चिट्ठियां पहले लिखियां सन, ता ओ आप जी नू पहुंचिया नहीं, पृथ्वी नू बुलाया। महाराज मैनू तो कोई सिख ने चिट्ठी नहीं दिती। धन गुरु रामदास पातशाह कहन लगे, भाई इथे गुरु दरबार विच मुकरना ठीक नहीं, सच सच कह दे, ते जे तू सच नहीं कहेगा तो असी जिथे पईआं हन सेवक नू भेज के तेरे घरों मंगवा लवांगे, उचारण करो श्री वाहिगुरु। सेवादार भेजिया, जेड़ी थां साहिब जी ने दसी सी उथों जाके चिट्ठियां ले आया। धन गुरु रामदास पातशाह कहन लगे, लो भाई हुण जेड़ा चौथी चिट्ठी उचारण करेगा ना, गद्दी दा हकदार ओ होवेगा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने चरणा ते सिर रख्या होया,
ਮੁੜ ਮੁੜ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ

बावड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विलक दी आत्मा कृपा दी जाचना करती है, आपे दी खोज करती है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयों विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतांत दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखन जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द बोल हन गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

जोग कहन लगा एक और फिर जाओ उसनु कहो मेरे लंगर विच आके प्रसादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया पाए तिलकू जी ने बुआ

भाई साहब कहन लगे मेनू स्वर्ग की लोड़ नहीं, फिर बुआ बंद कर ले। चेले वापस आए, जोगी कहन लगा एक बारी फिर जाओ, तिलकू नु आखो

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनु सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

प्रभु अखोले। गुरु की गलती गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे, गुरु दे चरणा तू कुर्बान हो।

तेरा गुरु केड़ा जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता, जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नू ठुकरा दिता। उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा, मैं भी दर्शन करा। केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे, मेरे गुरु मेरे नहीं ते सारिया दे सांझे ने, उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन।

इस जोगी ने पाई दिल को दिनाल पाई, पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां उसे लग गई है। हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सब बन गया दोस्ती करनी उन्होंने।

सियाने कहंदे ने दोस्ती भी देख के पानी चाहिए। सोचना चाहिए जिदे नाल मैं दोस्ती करन लगा ए मेरी दोस्ती दे लायक है कि नहीं, किधरे ता नहीं। आज जिदे नाल मैं दोस्ती करन लगा कल एदे कोल मैनू नुकसान उठाना पवे। इस वास्ते के है तित जाए बहु सत संगति जिथे हर का नाम बिलोइए उथे।

नानक पिन स्यों क्या कीजै दोस्ती जे आप भुलाए करतार उन्हां नाल की दोस्ती करनी जिन्हां नूं परमेश्वर ने भी भुला दिता है। इस करके दोस्ती ओहदे नाल करो जिहड़ा

ऐसे करो जिथे निभा सको ते निभ सके, दोस्ती ओ दे नाल करो जिदे कोलो नुकसान ना उठाना पवे। ए ठीक है कि भला करो जरूर, पर जे भले दी उम्मीद करनी ए भी मेरे नाल भला करे, तां उत्थे भला करो जिथों भलाई।

जोगी कहन लगा दिल को, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी। बड़े गुण दसे ने अपने गुरु ने, पर एक गल दस, तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने।

अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए। मलान कहन लगे बचन की कोई उम्मीद है तूफान।

जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताई तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वाल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन,

लगता भी कोई साधु ना ये था कोई अगे होना ना कोई पिछे जे मर भी गया था केड़ा किसने रोना है इन चुके सुट दे जद सारे मेरे वाल देखने लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देने ओही गल हुई सारे मेरे दुआले हो गए।

बलि दियो संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आगे साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनू चुक के समुंदर दे विच सुट दिता। मैं ता किसे तरह बने लग गया पर मेरा वो कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया। ओ दे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदू इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे पासे कीता।

सब तो पहला रागां विच श्री राग जो के इस समय ही गाया जाता है। बाणी विच इसनू रागां विच सिर मोर मन्या है। रागां विच श्री राग है। ते शब्द भी श्री राग दा पहला शब्द है। मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाव, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाव, मत देख भूला विसरे तेरा चित्त ना आवे ना। शब्द श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया। राहो दी तुक है, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देख्या अवर ना ही था। मैं एक बेनती करूंगा बच्चियां नू, जरा इना दी गल्लां दी आवाज जे इधर आएगी तां मन खिंडदा है। फिर सब तो पहला जपताल 10 मात्रा ते अंतरा 10 मात्रे दा ही सुलफाक विच, सुलफाक चलंत लय विच गाया जांदा है। अंतराय दा चलंत लय विच है ते अस्थाई ठा विच है।

में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, हर था रमिया होया है, इसे तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहने सारे अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत दाई है। तिस कै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारे अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जदों गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, ते फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनान वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जती जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगती की, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना ले सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहने आकर हार के तेरी शरण में आ गए, तेरी शरण में आ डिगे, तेरे चरणा नाल लग गए कि हे मेरे मालक, असी तेरा अंत नहीं पा सकते। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लिहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक के चरणों में डिगना पिया, तो तू ही उस लैन से ना तुरी, तू वह आरती करनी है जिहड़ी आरती तेनों गुरु ने समझाई है। कि आरती है? सतगुरु पूजो भाई, आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों ना लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठांडा बरमा निगम विचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच बर्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बरमा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा परमा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं किए जा सकते। अलख ना लखिया जाए, वो अलख है जो लखिया नहीं जा सकता। आगे भगत कबीर जी के

आनंद हर जाने। बस वो परमात्मा साडे हिरदे विच वस जाए, उसकी यही आरती है, उसकी रजा विच आ जाइए, उसके हुक्म विच आ जाइए, जिवें वो रखता है, जिवें वो चलांदा है, जिहड़ा उन्हें मार्ग रस्ता बनाया है उस ते चल पईए। भगत जी कहते हैं साडी आरती है, इसलिए आओ तुझ बुद्धि अनुसार सेवा कीती प्रवान कर लेना, कि इसनू याद कर लेना कि गुरु अगे आरती गुरु की पूजा साडी श्रद्धा साडी पावनी साडी निम्रता ते गुरु का हुक्म मनना है। ते जिन्हें जिन्हें गुरु का हुक्म मन लिया जो तिस पावे सो आरती होए। इसलिए भाई आपा कोशिश करिए कि दुनियावी अडंबर छड़ के सच्चे नाम दे नाल जुड़न की कोशिश करिए। कल कोशिश करांगे इस तो अगला प्रकरण अगे आरंभ करिए। कोई रसना मानी ना रहे, सारे मिलके आखो जी।

अपने इस शब्द दे विच धन गुरु नानक साहब का जिक्र करदे आ लिखदे ने ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लेके प्रगट होए उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक

बाद दूसरे गुरु बने गुरु अंगद साहब, पर किस तरह बने? गुरु अंगद साहब जी का पहला नाम है भाई लैणा। ए देवी दे पुजारी सन। हर साल बड़ा भारी जथा लैके देवी के दर्शन करन जाया करती सन। इस वरी भी भाई लैणा अपने साथियों के नाल देवी के दर्शन करन जा रहे ने। रस्ते दे विच करतारपुर शहर आया, जिथे इन्हां सारिया ने आके डेरा किया। भाई लैणा अपने साथियों नूं कहण लगे, मैनू पता लगा है इस करतारपुर शहर दे विच गुरु नानक साहब रहिंदे ने। बड़ी शोभा वड्याई सुनी है उन्हां दी। भाई मेरा दिल करदा है मैं दर्शन करे आवां, देखा कि गुरु नानक कैसा है। साथियों नाल सलाह करके घोड़े ते सवार होए ने। भाई लैणा अपने डेरे तो चल पए उस जगह वाल जिथे गुरु नानक वसदा है। पुछदे जा रहे ने ओ डेरा ओ धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक बैठा है। अजकल आप गुरुद्वारे कहने, पहला धर्मशाला क्या करते सन, जिथे बैठ के परमेश्वर की सिफत की जाए। एक परमेश्वर तो सिवा होर कोई गल ना होवे, जिथे सेवा ते सिमरन होवे, जिथे दर्दवंदा लोड़वंदा की सेवा की जाए, जिथे दुखियां का दुख दूर किया जाए, जिथे धर्म की गल हो गई, वो धर्मशाला वो गुरु का परमेश्वर का घर। भाई लैणा घोड़े ते सवार ने पुछते जा रहे ने कि धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक वसदा है। पुछदे हैं, काफी दूर चले गए। हुण अगों किसे कोल पुछना है, कोई नजर ना आया तां भाई लैणा हैरान हो गए। एक बड़ी ही सोहनी सूरत जिदे चेहरे तो नूर टपकदा है, जिन्हां दे बोल फरकदे ने, सूरत देखे मन नूं ठंड पैंदी। ओ सूरत पता नहीं किधरों चलदी होई भाई लैणे दे सामने आ गई। और जद भाई लैणा उस सूरत नूं देखदे ने, अखां चमकण नूं दिल नहीं करदा, अखां कहिंदियां ने कि मैं सूरत देखदा रहां, ए सूरत अखां तो ओ लेना होवे। इन अखां दे नाल बड़ा कुछ देखिया पर एहो जी सूरत अज तक देखी नहीं। ते भाई लैणा उस सूरत नूं पुछदे ने, ओ धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक वसदा है। मैं गुरु नानक दे दर्शन करने। सात संगत, ए सूरत होर कोई नहीं, ए आप ही गुरु नानक है जेड़ा इस सिख नू आप लैण वास्ते आया। गुरु नानक साहब
ਭਾਈ ਲੈਣੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਭਾਈ ਲੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕੋ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਖਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਆਵੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਾ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਅਗਾਂ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ।

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई कालना ना कालनी पवे, इस तरह नहीं। ये तुरती चीज इलाही दात जिन्हों लिखी उसे नो मिलनी, पर मिली भी कालना।

जिहड़े दूसरे भरा सन उन्हां दे लड़के दे नाल व्याहे होए सन। बीबी अमरो कहन लगे, पिता जी मेरे पिता गुरु अंगद साहब खडूर साहब रहिंदे ने, मैं आप दे नाल जरूर चलांगी पर मैं तां जा सकती हां अगर मेरे सास सहुरा और मेरे पति इजाजत देंगे। सत्संग एक गल ध्यान विच रखें, अजकल घरां विच कलेश और दुख इस वास्ते नहीं कि घरां दे असूल घरां दे नियम खत्म हो रहे, वड्डियां दी इज्जत वड्डियां दा आदर करना उन्हां दा कहा ना मनना ये आम हो गया। हुण इत्थे देखो बीबी अमरो गुरु अमरदास नूं कह रहे ने, पिता जी जदों तक सस सहुरा इजाजत ना देण पति इजाजत ना देवे मैं पेके घर किस तरह जा सकदी हां। फिर जदों तक पेके घरों कोई संदेशा ना आवे पिता दा कोई समागम ना होवे मैं किस तरह जा सकदी हां। अपने गृहस्थ जीवन विच जे आपां सुखी वसना है तां इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना पवेगा। वड्डियां दी आग्या वड्डियां दा कहना मनना फर्ज बनदा है, पर नाल इक गल इह भी है कि वड्डियां नूं भी छोटियां दी भावनावां दा ख्याल रखना चाहिए। दोनों पासे प्यार होवे तां जीवन दा आनंद कुछ होर होंदा। अमरदास कहन लगे, बेटा तेरे सस सहुरे नूं मैं पुछ लैना, तेरे पति कोलों इजाजत भी मैं लै लवांगा, ते तुहाडे पिता गुरु अंगद साहब दे चरणां ते सिर रख के मैं उन्हां नूं मना लवांगा कि बीबी अमर नूं मैं लैके आया क्योंकि मैं गुरु वाला बनना। इस तरह अमरदास जिन्हां नूं आपां हुण गुरु अमरदास कहने हैं अपने पिंड तों खडूर साहब चल पे। जद खडूर साहब पहुंचे गुरु अंगद साहब संगतां दे नाल बैठे हुए दूरों तक लिया कि साडा कुड़म अमरदास आ रहा, क्योंकि भरा दा भरा भी कुड़म ही मनिया जाता है। गुरु अंगद साहब ने आसन दिता कि साडे कुड़म दा भरा कोई भी कुड़म ही लगा कुड़म आया। जद सिंघासन दिता बैठण वास्ते ता अमरदास ने हाथ जोड़ के चरणा ते मत्था टेकिया ते चरणा दे कोल ही बैठ के कहन लगे, पातशाह मैं कुड़म बन के नहीं आया सेवक बन के आया, अपने चरणा विच देओ जगह सिख बनाओ अपना सेवक बना लो। उमर अमरदास दी ओ है जिन्हों आपा कहने बुढ़ेपा, उस उम्र विच आके सेवा की थी। लंगर च भांडे मांजे लंगर पकाया झाड़ू फेरिया और कठिन सेवा लई रोज सवेरे कुछ मील चल के ब्यासा दरिया ते जांदे ने पानी दी गागर भर के फिर वापस आके पैदल गुरु अंगद साहब नूं

अमृत शतर गुरु राम में दियो समा बीतिया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति

परेड आदि थे। दूसरे दिन फिर बड़ी मेहनत करके बड़े सुंदर छड़े बनाए। शाम को गुरु अमरदास फिर आए, कहन लगे थड़े चंगे नहीं बने, ढा के फिर बनाओ। दूसरे दिन भी थड़े ढा के, तीसरे दिन फिर थड़े बनाए। तीसरे दिन गुरु अमरदास फिर आए ते कहन लगे थड़े अज भी ठीक नहीं बने, इन्हां नूं ढा के फिर बनाओ। तारामा जी खिज के कहन लगे, असां तां थड़े बड़े सुंदर बनाए बड़ी मेहनत दे नाल, पर आप जी नूं पसंद नहीं आंदे। आप जी दी उम्र वडेरी हो गई है, चंगी चीज भी चंगी नहीं लगती, मैं तां इस तों अच्छा होर नहीं बना सकदा, इह कह के चले गए। ते जद गुरु अमरदास ने भाई जेठा रामदास नूं कहा, रामदास थड़ा तेरा भी ठीक नहीं बनया, ढा के बनाओ। तां रामदास जी हाथ जोड़ के गल विच पल्ला पा के कहन लगे, दाता साडी मत बड़ी थोड़ी है, साडी समझ बड़ी छोटी है, सच्चे पातशाह हुणे ढा देंदा ए थड़ा, आप जी जिस तरह हुक्म करो उस तरह फिर थड़ा बनावांगा, क्योंकि सेवक का काम है हुक्म मनना, जिस तरह हुक्म करो सेवा करांगा। यह है हुक्म मनना, सेवा करनी। हुक्म मनिया, सेवा की, गुरु की खुशी मिली, तो हुण गुरु ने कितनी कृपा की, रामदास नु उस सिंघासन ते बैठा दिता जिथे आप बैठा करते सन। परिक्रमा की हुण रामदास दे चरणा ते आप मत्था टेकिया, ते रामदास नु गुरु रामदास बना दिता। सेवा सिमरन और हुक्म मनन दा ए फल मिलिया कि रामदास गुरु रामदास बन गए, जिन्हां ने अमृतसर साहब शहर वसाया, जिते सरोवर बनिया, हरि मंदिर बनिया, ते जेड़ा भी उत्थे इशनान करता है, जदों भी वह गल कहिंदा है इशनान करता है, तां उहदे मुंह तों अपने आप ही निकलदा है, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। पर एक गल कह दें, गुरु बन के मन विच हंकार नहीं आया। गुरु नानक साहब के साहबजादे बाबा श्री चंद गुरु रामदास जी नूं मिलन आए। गुरु रामदास जी का दाड़ा बड़ा लम्मा सी, ते बाबा श्री चंद कहन लगे, रामदास इन्ना लम्मा दाड़ा, इन्नी लम्मी दाड़ी क्यों वधाई? होर कोई हुंदा उहदा जवाब कुछ होर हुंदा, पर गुरु रामदास का जवाब की सी? एक हथ दे नाल अपनी दाड़ी फड़ ली, एक हथ दे नाल बाबा श्री चंद दे पैर फड़ ले, अपनी दाड़ी दे नाल बाबा श्री चंद जी दे पैर झाड़न लग पए गुरु रामदास। ते नाले कहंदे ने, बाबा जी तुहाडे वर्गे महापुरशां दे चरण झाड़न वास्ते ये दाड़ा वधाया होया। तां बाबा श्री चंद कहन लगे, रामदास अगर ये निम्रता साडे विच हुंदी ते असी गुरु ना बन जांदे। पाठ कह रहे ने, ऐसे गुरु किथे मिलनगे, इस वास्ते सारे दर छड के इन्हां दे दर आ पए आ। अमरदास अमृत छतर गुरु रामे दियो, हुण गुरु रामदास ने कृपा की। गुरु रामदास जी दे तीन सपुत्र सन, वड्डे बाबा पृथ्वी चंद, उन्हां तों छोटे महादेव, ते तीसरे अर्जन देव, जिन्हां नूं आपां हुण गुरु अर्जन साहब कह के याद करदे।
ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਔਰ ਆਗੇ ਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਗੁਰਗਤੀ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਯਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਭਿਖੋ ਨਯਣ। ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੌਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਘਟੀਏ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਮਝੋ ਰੱਬ